0: कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 to 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM
2: मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 7 टू 8 PM संडेज 1 टू 5 PM
1: विजिट sabrang.ca
3: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 4036171868।
1: निगा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696।
2: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
0: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
0: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
3: दूजी लोकेशन 117-7780
0: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
3: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
0: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
3: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
0: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222।

0: ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 5876174696 587-617-4696 ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 5876174696 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
1: ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਸਿਰਫ $7 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਸੁੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 ਜਾਂ ਆਓ ਯੂਨਿਟ 530-669 ਸਵਾਨਾ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ
2: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे आशा करता हूं कि आपका परिवार आपके दोस्त सब सेहतमंद होंगे और बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे कैलगरी के अंदर इस समय मौसम जो है बहुत बढ़िया है तो पूरा आनंद उठाएं बाहर निकलें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं इस समय कैलगरी में स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल और अक्टूबर एंड तक के प्रोग्राम चलते हैं जब तक जो हमारी ठंड की देवी हैं वो आकर हमें दस्तक नहीं देती और हमें अंदर बंद नहीं कर देती जब तक जो भी मौसम हमें मिलता है आप इसको जरूर जरूर एंजॉय करें आज जो दिन है 17 अगस्त 2026 और अगेन हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट के बारे में जो कि होने जा रहा है हमारे कैलगरी में और एक बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा बहुत ही ऑस्पेशियस दिन जन्माष्टमी जो है वो मनाई जाती है हमारे पूरे हिंदुस्तान में और जहां जहां भी हमारे हिंदुस्तान के लोग बसते हैं और कृष्ण जी की लीलाओं को हम लोग याद करते हैं और उसके बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं तो ऐसा ही प्रोग्राम होने जा रहा है भक्ति वीक्स जो कि लेके आ रहे हैं आपके लिए द आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट भक्ति के जो तरह तरह के डिफरेंट वेज हैं वो आपके लिए लेके आती हैं और सबसे मजेदार बात है कि इसके अंदर जो कीर्तन होता है दोस्तों वो अमेजिंग होता है एक दो बार मेरे को ऊपर वाले ने ये क्षमता दी राधा मेरे पे कृपा करी कि मैं गया और वो जो इवेंट था उसको अटेंड किया और आप विश्वास करें उठने का मन नहीं हुआ आपको वो जो कीर्तन है वो जोड़ देता है ऊपर वाले के साथ और आप दिल से दिमाग से अपनी सोल से जुड़ जाते हैं उस भक्ति के जो एटमॉस्फेयर वहां पे बनाया जाता है तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम होने जा रहा है ये है 5 सितंबर 5:30 PM शाम को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं वैशाली जी और सच्ची जी आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या होने वाला है एक बार फिर से मैं माफी चाहूंगा मैं कुछ वर्ड्स अगर मेरे से

0: गलत निकले या मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना निकले, क्योंकि मेरी अभी सर्जरी हुई है मुंह की, तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूँ। तो वैशाली जी, सची जी, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में आप सब।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो भक्ति बीट्स, पहले तो मैं वैशाली से शुरू करूंगा। वैशाली जी, भक्ति बीट्स और एक ये जन्माष्टमी स्पेशल है, तो और इसके अंदर पोस्टर में देखें तो एकदम नए तरह के जो ड्रम्स हैं, गिटार हैं, और जो नया तरह का म्यूजिक सिस्टम है वो दिखाया गया है। जबकि हम लोग बात करते हैं भक्ति, तो उसके अंदर तो हारमोनियम, तबला और सितार की बात होती थी। तो दुनिया चेंज हो रही है और मेरे ख्याल से म्यूजिक चेंज हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे को एक दो चांसेस मिले आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स में जाने के लिए, तो वहां पे मृदंग बज रहा था और मृदंग के साथ साथ वो लोग तबला पे संगत कर रहे थे और साथ में बोंगो पे संगत हो रही थी। सची जी, विश्वास कीजिए कि उठने का मन नहीं किया, इतना आपको उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया कि, और साथ में जो वर्डिंग्स थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो विशाली जी, आप शुरू करते हैं कि क्या प्रोग्राम ये है और क्या क्या इसके अंदर होने वाला है।
2: अच्छा, तो सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर एट रेडियो सुरसंगम संगम टुडे। भक्ति बीट्स हमने आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हम लोग पहली बार भजन क्लबिंग, आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर है स्पेशली यंगस्टर्स में, क्योंकि भजन तो वही है हमारे पुराने, जो कीर्तन है भजन है वही है
0: जी।
2: उनको हम नए बीट में, नए स्टाइल में, क्योंकि आजकल के यूथ को हर चीज थोड़ा अलग करके, मतलब डिवाइन से जुड़ने का मार्ग सबके अलग अलग है। कोई मेडिटेशन करता है, कोई भजन करता है, कोई क्या करता है। ये एक नए तरीके से हम लोग डिवाइन से कनेक्ट करने का विथ फन, वेयर एवरीवन कैन कनेक्ट, यंगस्टर्स कैन कनेक्ट एंड द ओल्डर कैन कनेक्ट। सो वी हैव दिस फन वे ऑफ कनेक्टिंग ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी। तो यही है भक्ति बीट्स। हमारे पास एक मस्त ड्रमर हैं, गिटारिस्ट्स हैं, सिंथेसाइजर हैं, सो बहुत ही फन इवेंट होने वाला है जिसमें वही पुराने भजन लेकिन उनको नए स्टाइल में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, सो बहुत मजा आने वाला है।
0: क्या बात है। सो दोस्तों, जन्माष्टमी जो इस 2026 की है वो सितंबर 4 की है, शुक्रवार का दिन है। तो सची जी से पूछते हैं, सची जी आपको कितना टाइम हो गया कैनेडा में?
1: कनाडा में हम 2014 से हैं यहाँ।
0: अच्छा।
1: और कैलगरी में ही 2014 से हैं
0: जी।
1: और तब से दूसरे ईयर से, मतलब 2015 से हमने ये अपना ग्रुप में सत्संग शुरू किया
0: जी,
1: गाना
0: जी,
1: गाने का
0: जी।
1: और फिर 4-5 साल से ये हमें भी ये विचार आया कि कृष्ण जन्माष्टमी हम भी क्यों ना सेलिब्रेट करें सब मिलकर।
0: क्या बात है।
1: तो इसलिए ये सोच हमने, और ये भजन क्लबिंग का इस बार सबसे पहली बार हम लोग कैलगरी में कर रहे हैं।
0: तो ये आपने जो भजन क्लबिंग की आपने बात करी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये सब जो भक्ति संगीत है ये आप इंडिया में पीछे करते रहे हैं, कहाँ से हैं आप इंडिया?
1: हाँ, मैं गुजरात में, बड़ोड़ा से
0: है। तो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो तो वहां पर हमारे भक्ति तो किसी न किसी वे, किसी न किसी रूप में है ही है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो वहां पर आपने सत्संग में हिस्सा लिया?
1: हाँ, हम बहुत सालों से करते रहे आर्ट ऑफ लिविंग से। हम लोग, मेरा, मैं और मेरे पूरा परिवार
0: जी,
1: सब हम जुड़े हैं 1999 से।
0: तो 1999 से, मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करता हूँ और 2025 में लेके आते हैं, 2026 में। और अब हम, जैसे कि विशाली जी ने बताया कि इसके अंदर बहुत डिफरेंट वे से म्यूजिक और जो सत्संग है वो किया जाएगा। आपने ये पहले सुना है?
1: मैंने भजन क्लबिंग वैसे सुना है पर कभी किया नहीं है।
0: किया नहीं है। तो सुनने की बात पे करते हैं। आपको लगता है कि ये जो नया तरीके का क्लबिंग है या नए तरीके का जो भक्ति संगीत आया है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल संगीत को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगा या उसमें ये ऐड करेगा?
1: मुझे लगता है कि ये पीछे तो नहीं छोड़ेगा पर उसमें ऐड जरूर कर सकता है
0: जी।
1: क्योंकि आजकल यंग जनरेशन जो है हमारी, युवा पीढ़ी
0: जी,
1: ये सब ये भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
0: हो रहे, बहुत बढ़िया बात है।
1: और बस उनको थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा एनर्जी वाला बिट्स चाहिए ज्यादा।

0: कहीं ना कहीं हम लोग, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, लेकिन स्पेशली अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो हम लोग ऊपर वाले से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. और जैसे कि एक पिक्चर में कहा था, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल. तो भगवान से डर बहुत लगता है. और स्पेशली अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी बहुत डिफरेंट विचारधारा की है. और उनको, जैसे कि सचिन जी ने कहा कि देखने को मिल रहा है कि युवा पीढ़ी भी बहुत जुड़ रही है इस समय ऊपर वाले के साथ भगवान का नाम लेने के लिए. इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे पेरेंट्स को जाता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि यहां पर वो लोग ही आकर हमारी युवा पीढ़ी को उस तरह से बताते हैं. क्योंकि यहाँ की युवा पीढ़ी बहुत डिफरेंट है. जो इंडिया में बच्चे पले बड़े हैं वो यहाँ के बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं. क्योंकि इंडिया में हम लोग जहाँ रहते थे वहां पर एक कोने में मंदिर था, एक में गुरुद्वारा था. तो सुबह हमारी जो नींद खुलती थी वो कीर्तन से और मंदिर के यू नो घंटी से ही खुलती थी. स्कूल जाते थे तो सब जगह मत्था टेक के ही जाते थे. तो डिफरेंट वातावरण था. अब आपके हिसाब से ये आर्ट ऑफ लिविंग जो इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बेनिफिशियल होंगे?
1: बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी बेसिकली क्या क्या चाहते हैं. दे हमको ऐसे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग में, जब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हाउ ही सेज कि टाइम के हिसाब से वी हैव टू चेंज, राइट? वी कांट जस्ट कीप डूइंग द सेम ओल्ड थिंग्स. और ज्यादा ज्यादा गुड़ इसमें जाए तो लोग उससे थोड़ा दूर दूर होने लग जाते हैं. तो इसलिए सिंपल वे में कैसे थोड़ा सा मेडिटेशन किया, थोड़ा सा ब्रीदिंग किया, थोड़े से ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस किए, भजन कीर्तन किया, नाचे गाए, झूमे, उसमें बस इतना काफी है अपने लिए, जिसमें हम भगवान से फिर भी जुड़ सकते हैं. हर किसी को इतना आजकल समय नहीं होता और इतना उनमें कहो तो टाइम नहीं है अपनी रोज के फास्ट लाइफ में कि हम हर बार पूजा पाठ में लगे रहे. जैसे हमारी दादी दादा कैसे, हम लोग, मुझे याद है मेरी नानी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पूजा करती थी.
0: मेरी मम्मी भी वही है, वो सुबह पाठ करने बैठती हैं तो वो उन्होंने वो पूरा खत्म करके ही उठना है सुबह, जपजी साहब और वो सब उनका रोज का नियम है, उनको ये करना ही करना.
1: वो बहुत अच्छे सुंदर था, बहुत ही अलग था. लेकिन आजकल के जीवन शैली के हिसाब से हम लोग को बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना ही पता नहीं सही शायद नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर हम ज्यादा उन पे प्रेशर डालेंगे तो फिर वो पूरा ही अपने स्पिरिचुअल
0: खो जाएंगे बिल्कुल.
1: तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि बच्चे थोड़ा अपने इसमें तो रहेंगे ही, क्योंकि उनको डिविनिटी में इंटरेस्ट तो है
0: जी.
1: लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना दे पाए. तो इसलिए ये एक अलग तरह से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं भगवान से विथ मस्ती डांस, क्योंकि हम लोग इस इवेंट में एक ओपन डांस फ्लोर भी रखने वाले हैं.
0: क्या बात.
1: और चेयर्स भी होंगे ऑब्वियसली सबके लिए, जितने पार्टिसिपेंट है सबके लिए चेयर्स भी होंगे, ओपन डांस फ्लोर भी होगा. तो जिसको उठ के, जैसे अभी सचिन जी ने कहा कि एक्सप्रेस योर सेल्फ फिजिकली, राइट? यू कैन डांस, यू कैन झूमो झूमो गाओ नाचो, हरि का नाम लो, मौज बनाओ, बस.
0: क्या बात है. तो
2: एक और बात मैं कहना चाहूंगी
0: जी, जी.
2: कि इसमें ये छोटे बच्चों के लिए हमने किशन जी के झूले को भी रखा है.
0: अच्छा, क्या बात है.
2: हाँ, उसमें बाल गोपाल भी विराजमान होंगे.
0: अच्छा.
2: सो दैट सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो किशन जी को झूला भी झूला पाएंगे.
0: क्या बात है. दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेड वॉज फाउंडेड इन 1981 बाय श्री श्री रविशंकर जी. और अब हम 2026 में हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने सालों से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ रही है. और कृष्ण जी की अगर हम बाद में बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत देवी देवताएं हैं. और देवी देवताओं की बात करें तो अगेन, लेकिन जो श्रेष्ठ अवतार वो हमारे विष्णु जी हैं. और बाकी सब उनके अवतार गिने जाते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण जी हो. तो अब कृष्ण जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें डीपली, तो महाभारत में बहुत बड़ा रोल उनका है. और उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो डिफरेंट, जब मथुरा जाते हैं और वहां पर मंदिरों में जाते हैं तो एक डिफरेंट वातावरण मिलता है सच्ची जी. वाकई वहां पर एक अलग ही दुनिया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आउट ऑफ फाउंडेशन तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके अलावा कृष्ण जी को जो पूरी दुनिया में लेके गए हैं वो है इस्कॉन. इस्कॉन के मन

0: मंदिरों में
1: सही।
0: उन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं को बहुत दुनिया भर में हर एक कोने में जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है वहां पे पहुंचाया है, और हमारे अपने भारत देश के नहीं बल्कि बहुत अलग देशों के लोग भी, अलग संस्कृति के, अलग धर्म के लोग भी इससे जुड़ गए और अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया कृष्ण जी को। तो मैं आपसे दो दो मिनट चाहूंगा, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है इस आर्ट ऑफ लिविंग इन प्रोग्राम्स को लेके, तो सच्ची जी शुरू करते हैं। सच्ची जी आप बताएं, दो मिनट का टाइम, कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो मैं आपके लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है तो आप दिल से जवाब दे पाएंगी।
1: नहीं नहीं, वो बात तो सही है, पर किशन जी से ना उनकी लीलाओं के जो उसमें वैविध्य है
0: जी जी जी,
1: कि जैसे वो छोटे से बच्चे थे तब से हम उनका सुनते आए हैं, तो उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी जी,
1: जैसे बाल किशन गोपाल भी है
0: जी,
1: और बड़े होते हैं तो मथुरा जाके मामा कंस को भी वो सजा दे सकते हैं उनके किए की, और वही किशन नटखट बन के मक्खन भी चुरा सकते हैं
0: जी,
1: और गोपियों के साथ राधा जी के साथ रासलीला भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आर्ट कल्चर ह्यूमैनिटी, आप एक फील्ड बताओ और किशन जी उसमें हैं,
0: एक संपूर्ण हीरो
1: पूरा
0: फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड।
1: भगवत गीता की तो हम बात ही नहीं करें,
0: बात ही नहीं करें अभी तो, बिल्कुल,
1: क्योंकि गीता के ऊपर तो आप देखोगे तो इतनी सारी पुस्तकें लोगों ने लिखी हैं, डिस्कशंस हुए हैं बहुत सारे, और फिर भी अभी कुछ बाकी रह गया ऐसा सबको लगता है उसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशाली जी आपका क्या इसके बारे में ख्याल है?
2: सचिन जी ने जो कहा वो एकदम सही बात है ऑब्वियसली, क्योंकि कृष्ण जी के बचपन से लेके पूरा उनकी जो लाइफ स्पैन था उसमें अलग अलग उन्होंने रोल्स प्ले किए, मतलब उनका ऐसे था कि जैसे टाइम के हिसाब से हाउ टू चेंज योर स्ट्रेटजी, हाउ टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, तो इसी तरह हम भी यही कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपनी नीड भी चेंज करके भजन कीर्तन का स्टाइल हम भी थोड़ा चेंज
0: कर रहे हैं।
2: तो फिर कृष्ण जी के जैसे अभी सचिन जी ने ये भी कहा कि भगवत गीता उसमें अगर हम जाएं तो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस भगवत गीता में ऑलरेडी है,
0: अगर हम उसको माने तो।
2: अगर हम उसको माने तो
0: सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन होना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, सॉल्यूशन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप सॉल्यूशन को मानेंगे।
1: करेक्ट, बिल्कुल सही,
2: सही
0: है कि नहीं? जी जी कंटिन्यू।
2: सो वही मतलब कृष्ण जी का हमारे सबके लाइफ में एक बड़ा रोल तो है ही है, लाइक एज यू सेड कि हम उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, हम वो जो भगवद गीता को किसी किताब की तरह पढ़ते हैं या उसमें से कुछ नॉलेज निकालने के लिए, क्योंकि एवरीवन कैन प्रेडिक्ट भगवद गीता इन अ डिफरेंट
0: वे। बिल्कुल बिल्कुल।
2: सो और दैट इज माई बिलीफ, हाउ एवर मच आई हैव रेड इट, कि जितना हम पढ़ेंगे
0: जी,
2: हर एक टाइम उसका मतलब हमारे नीड्स के हिसाब से अलग तरह से निकल सकता है
0: जी,
2: जो
0: जी,
2: हम उसका यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरा भी यही मानना है कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं एज एन इंडिविजुअल, आपको भगवद गीता कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का आंसर देती है, और अगेन जो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, और जहां पर अगर आप बात करें कि कौरवों की और पांडवों की और किस तरह से पूरी घटना को रचित किया गया, आप इस तरह से अगर हम बात करते हैं शकुनी का करैक्टर और महाभारत में और जितने भी लोग थे उनका करैक्टर, लेकिन कहा यही जाता है कि अगर भगवान कृष्ण चाहते तो ये युद्ध कभी नहीं होता। अगेन उनका चाहना जरूरी नहीं था, क्या वो एक्सेप्ट कम करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये युद्ध करवाया ताकि हम लोग सीख सकें, हम लोग जान सकें कि जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर धर्म की रक्षा के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट डजेंट मैटर कि हम लोग किसी भी अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की भी और हमारे गुरुओं की भी जो

0: सिख धर्म में है, उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए ही हथियार उठाए और उन्होंने ही इस चीज को कहा, रिएट्रेट किया कि भाई अगर हमारी बात धर्म पे आएगी तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे और रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो भगवद गीता और कृष्ण जी और आप दोनों की बात बिल्कुल सही है और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि बचपन से लेकर जब तो उन्होंने कंस का वध किया जबकि वो उनके मामा थे, लेकिन अगेन उन्होंने धर्म का साथ दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। उसका उनका वध करने के बाद भी जब वो महाभारत में पहुंचे और उन्होंने पांडवों का साथ दिया, हर रोज जो भी लीला उन्होंने करी जब भी तक वो थे, उनका हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और दैट ऑल्सो रिसेम्बल्स आर यूथ, क्योंकि अगेन कृष्ण जी का यूथ भी बहुत ही अमेजिंग रहा है,
1: amazing.
0: तो उसको हम लोग जी सकते हैं हर रोज।
2: आपके एक स्टेटमेंट पे मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी, आपने जब बोला धर्म, धर्म और रिलीजन में फर्क है।
0: जी, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
2: रिलीजन
0: नहीं, एब्सोल्युटली
2: सुनने वालों को जस्ट क्लैरिफिकेशन।
0: थैंक यू सो मच, मैं भी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आप पे कोई जुल्म हो रहा है, आपको कोई चीज गलत लग रही है, तो मेरे ख्याल से वो आपका धर्म बन जाता है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। तो दोस्तों, ये मैं शुक्रगुजार हूँ विशाली जी का, उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो अगेन बात यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं हो रही, बट एज ह्यूमन बींग की हो रही है। सो अगेन दोस्तों, ये थोड़ी बातचीत थी हमारी इस प्रोग्राम के बारे में, भक्ति बीच अगेन जन्माष्टमी स्पेशल आपके लिए आर्ट ऑफ लिविंग लेके आ रहे हैं 5 सितंबर 5:30 बजे। ये होने जा रहा है न्यू इंडो कैनेडियन सेंटर, उनका एड्रेस है 1916A 30th Avenue नॉर्थ ईस्ट Bay 8। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मैं वहां पर कुछ दिन पहले गया था और बहुत ही बढ़िया स्टेज है और काफी खुली जगह है, अच्छी पार्किंग है, तो आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स डिनर, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, 5 मिनट है हमारे पास। क्या ये टिकटेड प्रोग्राम है?
2: हाँ, टिकटेड प्रोग्राम है और टिकट इज ओनली $20।
0: अच्छा,
2: जिसमें आपको पूरा इवेंट और उसके साथ पूरा मील प्रसादम इंक्लूडेड है। और अगर आप 22-23 तारीख तक, हमने बंडल प्राइस रखा है जिसमें आप अगर 5 टिकट ले लो एक साथ में तो एक टिकट फ्री है, मतलब एक टिकट आपको $16 की पड़ेगी जिसमें आपको इवेंट और पूरा खाना प्रसादम इंक्लूडेड है।
0: जी, क्या
2: अच्छा, इस चीज का रीजन ये है कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग का यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर बनाने की कोशिश में है।
0: अच्छा,
2: खुद का
0: जी,
2: तो एक मेडिटेशन सेंटर के लिए काइंड ऑफ हम लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं अभी
0: जी।
2: सो इस इवेंट के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा फंड्स हमें, स्पॉन्सरशिप्स मिले, फंड्स मिले, डोनेशंस मिले
0: जी।
2: और फिर क्योंकि टिकट से तो फंड रेजिंग इतना नहीं होगा, लेकिन स्पॉन्सरशिप और डोनेशन से जो फंड रेज होंगे
0: जी,
2: वो हम हमारे न्यू आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाने की इच्छा हम लोग रखते हैं
0: जी।
2: तो उसमें हम लोग ये फंड्स का यूज कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो अगर ये टिकट चाहिए हो तो सच्ची जी आप बताएं कि कहाँ से लेके हम लोग ले सकते हैं टिकट्स।
1: ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है
0: जी,
1: और फिजिकल टिकट्स चाहिए
0: जी
1: तो मेरे पास, वैशाली जी के पास, और भी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जो भी टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं
0: जी,
1: उनके पास फिजिकल टिकट्स भी रहते हैं।
0: अच्छा,
2: यहाँ पे QR कोड है, अगर आपको फ्लायर जहाँ पे भी दिख रहा होगा
0: जी,
2: वहाँ पे QR कोड है, अगर आप QR कोड को फोन पे से क्लिक करो
0: जी,
2: तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका रीजन, उसका टिकट आपको लेना है, लिंक सब मिल जाएगा, पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे उसमें
0: फॉर श्योर। तो इसका आप, ये जो हमारा फेसबुक पे जो प्रोग्राम जा रहा है इससे में लाइव, तो प्रोग्राम के बाद आप प्लीज इस पे ये ऐड कर दीजिएगा पोस्टर, ताकि लोग जो हैं वो QR कोड से स्कैन करके वो ले पाएंगे। लेकिन आपने जैसे बताया, जो लोग हमें रेडियो पे सुन रहे हैं तो उनके लिए फोन नंबर 4036907252, तो उस पे आप लोग फोन कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगेन, आर्ट ऑफ लिविंग आपके लिए लेके आ रहे हैं भक्ति बीट्स जन्माष्टमी स्पेशल, 5 सितंबर को 5:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और एड्रेस है 1916A 30th Avenue नॉर्थ ईस्ट पे 8 कैलगरी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे को रेडियो सुसंगम पे भी बात कर सकते हैं। सचिन जी, विशाली जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड शेयरिंग
1: दिस अमेजिंग
0: इन्फॉर्मेशन। बिफोर वी एंड, 15 मिनट सेकेंड्स आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज, मैसेज।
1: अच्छा, मैसेज तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे कीर्तन और कीर्तन क्लबिंग
0: जी,

0: अच्छा यही नारायण का नाम हम भजन क्लबिंग में ऐसे भी ले सकते हैं, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, ये क्लबिंग हम डांस भी कर सकते हैं इसके साथ।
1: क्या बात है विशाली जी, ऐसे कलाकार आपको अच्छे पर बड़े हैं, तो आपको तो और किसी शादी की जरूरत ही नहीं है, है? आपके पास तो ऐसे उम्दा कलाकार हैं। क्या
0: मैं
1: बात?
0: एक बात बताऊं, इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जो लीड सिंगर है इसमें ही इज अ वेरी यंग मैन, उसका नाम है हितेश सचदेवा
1: जी,
0: और ही इज एन अमेजिंग सिंगर, बहुत ही बढ़िया वो बंदा गाता है, तो आप जरूर सब आइए और उसको सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: क्या बात है विशाली जी।
2: मैं तो इतना कहूंगी क्योंकि कुछ लोगों को शायद सवाल हो सकता है कि ये फिल्मी गानों पे भजन है क्या, वैसे नहीं है
1: जी, जी, जी।
2: ये एक्चुअल कीर्तन है, एक्चुअल भजन्स है
1: जो
2: फिल्मी गानों के ऊपर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है
1: जी।
2: और इनकी एनर्जी ही अलग है
1: जी।
2: इसका इसमें ज्यादा चैंटिंग है, यू रिपीटेड वर्ड जिसमें आप गा के मस्ती करके आप इन्वॉल्व होंगे, आप खुद गाएंगे, एक आप ऐसे शो नहीं देख रहे हो, कॉन्सर्ट नहीं है जिसमें गाने वाला गाता है,
1: course,
2: आप बैठ के सुनोगे
1: जी।
2: आप भी इसमें गाओगे, आप भी नाचोगे, आप भी मस्ती करोगे, इस तरह से हम लोग भगवान से जुड़ेंगे। सो प्लीज आइए, इट्स अ फैमिली इवेंट, सो बच्चे बड़े सब आइए और साथ में प्रसादम भी है, एंजॉय कीजिए जन्माष्टमी हमारे साथ।
1: क्या बात है। सो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। अभी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी प्रोग्राम भक्ति बीच के बारे में, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, जाइए कहीं नहीं, सुनते रहिए प्रोग्राम आपकी आवाज ओनली ऑन रेडियो सुर संगम 94.7 FM पर।
3: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी का मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर,
4: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनों तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1,
3: जानिया पछाणिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: तुहाडी ग्रोसरी दीआं लोड़ां पूरीआं करन लई सांझा पंजाब दीआं कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
4: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
4: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
4: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया छह लोकेशन का सांझा फोन नंबर
4: 403-835-2222। ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटा दा लगदा है, होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ़ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
5: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो, ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उहनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208।
6: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार, ओएसिस स्माइल मेडिकल। सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ, इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम, फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। कुछ मैसेजेस हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। सोनिक इंश्योरेंस, अगर आप अल्बर्टा में ट्रकों की इंश्योरेंस चाहते हैं तो बेस्ट रेट के लिए आप जरूर कांटेक्ट करें मानस पहुजा जी को 5878321208 पर। वाईवाईसी होम केयर्स, अगर बुजुर्गों के लिए आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए उनकी देखभाल के लिए तो प्लीज वीरपाल धर जी और उनकी टीम आपके लिए हाजिर है। आप उनको संपर्क करें 8257600983 पर। ओएसएस स्माइल मेडिकल नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कि सनरिच एरिया में ये नया क्लिनिक खुला है और अगर आपको डॉक्टर्स के किसी भी जरूरत है तो आप जरूर उनसे बातचीत कर सकते हैं 5876174696। मर्सिडीज बेंस कनाडा में सबसे बड़ी और डीलरशिप नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में है मर्सिडीज की, कंट्री हिल्स मर्सिडीज बेंस। अगर आपको मर्सिडीज कार खरीदनी है तो आप गौरव शर्मा जी को कांटेक्ट करें 4039036757 पर। पंजाब इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस की कोई भी जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हरपिंदर सिद्धू जी और लवप्रीत सिद्धू जी पे के साथ 4034043500 पर। मदर इंडिया रेस्टोरेंट नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन के लिए सिटीस्केप लैंडिंग में नया रेस्टोरेंट, 24 घंटे ये लोग खुले हुए हैं। अगर आपको इनसे बातचीत करनी है तो बातचीत करें 4039367777 पर। पिक्सल फूडो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट में पिक्सल फूडो स्टूडियो खुला है। सिर्फ $7 में पासपोर्ट फोटो तैयार किए जाते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर 4039470060 पर। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ेंगे शकील अहमद साहब और हम लोग बातचीत करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज की जो कि कनाडा में इस समय काफी सुर्खियों पे हैं, रादर वर्ल्ड में काफी सुर्खियों पे हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे अपने कनाडा की, और हर साल की तरह इस साल भी काफी जगह पर फायर्स ने बहुत डिवेस्टेशन मचाई हुई है। लेकिन इस समय बीसी में बहुत फायर्स लगी हुई हैं और उसके लिए मैक्सिको से भी जो है वो फायर फाइटर्स आए हैं, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अपने शकील अहमद भाई। उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं। शकील भाई बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
2: थैंक यू जी, बहुत बहुत आपका हम अपने सुनने वालों का रेडियो और फेसबुक के जरिए जो है फोन के जरिए उनके साथ रबते में
1: जी।
2: जैसा कि आपने कहा कि हम अपने लोकल

0: इश्यूज हमेशा डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में
1: जी।
0: तो एक जो बड़ी घटना जिसको हम कहें कि आज दिनों से जो ना हमें कनाडा के लोगों को खासतौर से ब्रिटिश कोलंबिया जो हमारा पड़ोसी सूबा है उसमें जो आग लगी हुई है
1: जी,
0: उसने जो ना बहुत जो तेजी से बड़ा नुकसान पहुंचाया है
1: जी।
0: और अब तक की इत्तला के मुताबिक वहां पे हजारों के हिसाब से लोग जो है वो बेघर हुए हैं और उनको वहां से निकाला गया है
1: जी।
0: और ये जो आग है इसने बहुत बड़े एरिया के ऊपर जो है जो ना तबाही फैलाई है, लोगों को जो है मजबूर किया है कि जो वो अपने घर बार छोड़ सके
1: जी।
0: तो ये जो आग शुरू हुई थी इसको भी शुरू अभी तकरीबन तीन से चार हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता काबू में आना भी शुरू हुई है
1: जी।
0: और कई इलाकों के अंदर जो है वो जो इवैक्यूएशन ऑर्डर थे
1: जी,
0: उनको डाउनग्रेड भी किया गया, लेकिन सदरलैंड सॉरी समरलैंड
1: जी
0: और ये जो कलोना का जो इलाका है और वर्नन का जो इलाका है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है
1: जी।
0: और इमदादी सरगर्मियां जो है जो रिलीफ एक्शन है
1: जी
0: वो कंटिन्यू चल रहा है। इसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि रेड क्रॉस कनाडा ने भी जो है ना उसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला है
1: जी।
0: और वो जो बहाली की सरगर्मियां हैं लोगों को वहां से निकालना तो उसमें भरपूर जो है, लेकिन एक बहुत बड़े कैनेडियन जिनका नाम जाहिर नहीं किया गया है
1: जी,
0: उन्होंने जो है डोनेशन दिया है और कहा है कि वो मैच करेंगे कि जो भी डोनेशन जमा होगा कैनेडियंस के जरिए इस आग पे काबू या इससे मुतासर लोगों के लिए जो $350,000 तक जो है जमा होंगे तो वो मैच करेंगे
1: जी।
0: अगर $350,000 तक अगर कोई जमा हो जाता रेड क्रॉस के लिए तो वो अपनी तरफ से ये देंगे। तो ये जो वाइल्ड फायर का जो एरिया था वो कहते हैं कि ईस्ट ऑफ पियर लेक एंसली क्रीक बेल्ड्रेन और ब्रंसविक क्रीक का जो इलाका है
1: जी,
0: वहां पे ज्यादा मुतासिर हुए हैं ये
1: जी।
0: और समरलैंड और वर्नन का जो इलाका है जो बड़ा फलों के हवाले से बड़ा मशहूर है कि वो सब उसके आसपास का रीजन जो है वो एयर क्वालिटी बड़ी खराब वहां पे और लोग जो है हजारों के हिसाब से वहां से उनको निकाला गया है।
2: कहा जाता है सर कि अराउंड 5500 से 6000 लोगों को जो घर हैं वो खाली कराए गए हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें जो ना नेटिव जो विलेज है वो भी खाली कराया गया है
1: जी।
0: जो नेटिव जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो भी मुतासिर हुए हैं
1: जी।
0: तो ये सब मिला के जो ना हर साल कनाडा में हर दूसरे साल कहीं ना कहीं कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। हमने देखा कुछ तीन साल पहले जो है हमारा, दो साल पहले ये जो जैस्पर
2: का इलाका है जी जी जी
0: ये मुतासिर हुआ। इसी तरह अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में आग लगती है
1: जी
0: वो बड़ी जो ना खतरनाक होती है। तो ये समर का सीजन जहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आता है
1: जी,
0: लेकिन ये इतना बड़ा खतरा भी मोल लेके अपने साथ आता है
1: जी,
0: जिससे जो है हमें बहुत ज्यादा जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और हमारे अमरीका हो, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया हो या जो है ये तो भाई यूरोप में भी कई जगहों पे आग लगी है। तो ये बस दुआ हम कर सकते हैं कि भाई पूरे वक्त से हर मुल्क को हर रहने वालों को महफूज रखे।
2: बिल्कुल शकील भाई, और मैं थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा था तो जो हमारा गूगल है वो कहता है कि वाइल्ड फायर स्टार्ट्स व्हेन हीट, ड्राई फ्यूल एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन अ केमिकल रिएक्शन नोन एज द फायर ट्रायंगल। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है, अगेन हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो है अनअटेंडेड कैंप फायर्स। क्या कहना चाहेंगे? जी
0: जी। सबसे एक

0: दिक्कत ये कि हमारा अपना शहर है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना सूबा है
1: जी,
0: इसकी हिफाजत जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। और जरा सी कोताही और गफलत जो है बहुत बड़ा नुकसान करने में चंद सेकंड लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर। सो ऊपर वाले से जैसे आपने कहा यही दुआ है कि जल्द से जल्द इस पे काबू पाया जाए ताकि जानो माल का नुकसान ना हो। और सबसे ज्यादा जो मुझे तरस आता है वो जानवरों पे है जो कि जंगलों में रहते हैं, उनके साथ कितना बुरा होता होगा।
0: बिल्कुल ज़ाहिर है वो उनकी जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है
1: जी,
0: और जो है वो अपनी जान बचा के जिस तरह से भाग सकते हैं वो निकल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, और जो दूसरी जो रिकॉर्ड उधर रहती है, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, उस आप ये समझे कि एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो कोई भी जो है ना उससे बच नहीं सकता
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसपे मैक्सिको से भी फायर फाइटर्स बुलाए गए इस पे काबू पाने के लिए सर।
0: जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, और जो है आपको याद हो जब कैलिफोर्निया के अंदर लगी थी आग कुछ अर्सा कबल, तो सब दुनिया भर से जो है इवन कनाडा समेत दर्जनों जो है ना हेलीकॉप्टर और जो एयर टैंकर्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनके जरिए सारी दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप से आए थे। लेकिन वो बहुत अर्सा भड़कती रही वो आग, बड़ी मुश्किल से जाके जो है जब वो बारिश वारिश हुई थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ मिला, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है
1: जी
0: ये बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाती है।
1: जी जी बिल्कुल। सो दूसरी खबर पे चलते हैं शकील भाई, थोड़ा सा अपडेट दें इस समय यूएस और ईरान वॉर का क्या चल रहा है। बहुत ही ज्यादा यू नो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि सीज फायर हो गया है कि अभी भी वॉर के हालात हैं, हार्मूज स्टेट ऑफ हार्मूज का क्या हालचाल है, और ट्रंप साहब और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी डालें सर इसके ऊपर।
0: देखिए वो हर बदलते दिन के साथ जो है, गुजरते दिन के साथ हर रोज सूरत हाल तब्दील होती है, और
1: अच्छा।
0: तो दिन में चार दफा सूरत हाल तब्दील होती है।
1: अच्छा।
0: और सदर ट्रंप के जो बयान आते हैं वो भी समझ से बाहर होते हैं वो कभी लगता है कि जंग बंदी हो गई है, कभी खिलाफवर्जी हो गई, तो वो अपना गुस्सा उतारते हैं
1: जी।
0: फिर जो है अभी उनका एक ताजा बयान है कि जी ट्रंप इंतजामिया का जो है ना वो जो ईरान के पासदारान इंकलाब है IRGC उनके साथ जो है ना IRGC
1: जी
0: इस्लामी रिपब्लिकन गार्ड्स
1: जी
0: उनके साथ वो उन्होंने रब्ता किया, जबकि इस्लामी की जो फौज का पैरेलर एक इदारा है पासदारान इंकलाब, उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि हमारा कोई नहीं है और ये बेसुरुबा बातें करते रहते हैं
1: जी
0: और लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं
1: जी।
0: तो आपने रूमस में जो है उस स्टेट के अंदर जो भी सूरत हाल है वो उसका बखूबी अंदाजा हम यहाँ अपने गैस स्टेशनों की प्राइसिस से लगा सकते हैं कि किसी दिन वो 172 होती है और किसी दिन जो है वो 162 होती है
1: जी।
0: जब थोड़े से हालात अच्छे होते हैं तो बाद वो 182 तक चली जाती है
1: जी।
0: तो इसी से अंदाजा होता है कि भाई कोई ना कोई किसी जगह पे हमला हुआ है
1: जी,
0: और जो है ये आग की शिदत, जंग की शिदत में इजाफा हुआ है
1: जी,
0: जिसके असरात सारी दुनिया की जो है ना ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री पे पड़े, और रातों रात जो है ना सारी दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है
1: जी।
0: तो लेकिन कोई क्लियर कट सिचुएशन नहीं है, कभी जंग बंदी है कभी जंग बंदी नहीं है।
1: अभी जो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं खबर पढ़ रहा था उसमें ये कहा गया है कि मिस्टर ट्रंप से ईरान शुड वेव व्हाइट फ्लैग अमिड टेंस डेडलॉक, मतलब कि आप वो चाहते हैं कि जो संधि का संदेश है वो ईरान की तरफ से आए, तो बड़ा अजीब सी बात है शकील भाई।
0: बस कुछ वही मैं कह रहा हूँ ना, इतनी गंभीर सूरत हाल है जिसको कहेंगे इतना कंफ्यूजन है
1: जी,
0: कि कोई भी चीज क्लियर क्लैरिटी के साथ ना मीडिया में आ पा रही है
1: जी,
0: और जो है ना वो ना ग्राउंड के ऊपर है
1: जी,
0: और ईरान भी जो है वक्फे वक्फे से वो आपने हुर्मुज़ से गुजरने वालों को कभी छोड़ देता है
1: जी,
0: कभी उस पर जो है ना जो है मिसाइल दाग देता है
1: जी।
0: अभी पिछले दिनों उसने जो है अबू धाबी के ऊपर भी जो है ना और कतर के ऊपर भी हमले किए
1: जी।
0: तो अजीब सिचुएशन होती है और कुछ नहीं पता चलता, खासतौर से जो मिडिल ईस्ट है और ये UAE का एरिया है
1: जी,
0: वो बहुत ज्यादा जो है ना गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है
1: जी।
0: और बस हम उम्मीद कर सकते हैं जब जंग बंदी हुई थी चंद
1: जी
0: ये आसार पैदा हुए थे कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अचानक चंद दिनों बाद दोबारा वही

0: शिव सिंजम की बन गई
1: जी,
0: और अमेरिका ने भी ईरान के हमले किए और ईरान ने उसके जवाब में हमले किए। तो बस ये ऐसी है। और बाकी जहां तक ट्रंप साहब की मकबूलियत का है, वो भी खबर है कि अमेरिका के अंदर उनकी मकबूलियत जो है वो तेजी से गिरी है
1: जी,
0: और जो है वो 53% जो लोग हैं वो जो है ना अमरीकी सदर के इस रवैये से जंग के जो मामला था उससे बड़े जो है ना नाला है
1: जी,
0: खुश नहीं है
1: जी।
0: तो आप देखें जो है आने वाले वक्त में क्या होता है।
1: नहीं शकील भाई, बहुत ही अजीब सी बातें होती हैं जो इनका कोई लॉजिक नहीं होता, बट स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा और थोड़ा सा क्लैरिफाई करें अपने एक्सपीरियंस से, हमारे अल्बर्टा में तो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होता है, फिर भी हमें इतनी महंगी गैस क्यों मिलती है?
0: उसकी वजह यही सबसे बड़ी है कि हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज नहीं है
1: जी।
0: हमारा सारा ऑयल एंड गैस जाता है टेक्सास, ठीक है, अमेरिका के अंदर, वहां रिफाइनरीज में रिफाइन होके वापस हमारा इतना ऑयल और महंगे दामों हमें वापस आता है
1: जी।
0: और अब जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को भी इतने अरसे के बाद जो है एहसास हुआ है
1: जी,
0: यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है उनको कि भाई अब हमें भी अपनी इंडस्ट्री लगानी चाहिए
1: जी।
0: तो एडमिंटन के पास और एक और जगह फोर्ट मैक के आसपास भी जो है ना कोई रिफाइनरीज की तामीर चल रही है, लेकिन रिफाइनरीज की तामीर में जो अखराजात है
1: जी
0: वो इस कदर ज्यादा है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल कैनेडा में आपको पता है कानून बहुत सख्त है अमरीका के मुकाबले में, तो वो लागत जो है ना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जो है ये एक आसान हाल था कि आप अपना ऑयल जो है जो फूड पैक से निकलता है ऑयल सेंट वो आप अमरीका भेजें मुख्तलिफ रियासतों में, डकोटा में या टेक्सास में, और वहां से जो है ना फिर ये हमारे पास रिफाइन हो गया। तो एक वजह ये भी है
1: जी।
0: और फिर भी थोड़ा बहुत हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो जो $1.63 लेकिन बीसी की साइड के ऊपर यही $2 हो जाती है
1: जी।
0: हालांकि जो है आज इसका सिर्फ हाल यही है कि हमारे पास पाइपलाइनें हो
1: जी
0: जो ईस्ट और जो ना जो वेस्ट को जो मिलाए आपस के अंदर और जो ना समंदर के रास्ते जो है दूसरी जगह पे जाए, तो हम थोड़ा सा इसको सब गवर्नमेंट लगी हुई, लेकिन अब इस कदर देर हो चुकी है
1: जी
0: कि वो जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको इतना टाइम लग गया है कि वो दोबारा ट्रैक पे आते आते जो ना वो या सारी जब फुल प्रोडक्शन शुरू हो
1: जी,
0: तो उसमें भी कई साल लगेंगे
1: जी। बिल्कुल,
0: उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बेहतरी की तरफ हालात हो।
1: बिल्कुल सर, अब इट्स हाई टाइम, हमारे को यहाँ पर रिफाइनरी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम लोग अपना जो ऑयल है एटलीस्ट खुद तो यूज कर सकें। हम लोग अब अभी तो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, फिर दूसरी कंट्री में भेजते हैं, उसको रिफाइन करवाते हैं और दोबारा से उसको महंगे दामों पर खरीदते हैं। बहुत अजीब बात है सर।
0: बस अब वो सिचुएशन कभी माजी में कभी रही नहीं
1: जी,
0: इसी वजह से किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं गया
1: जी।
0: अगर गया भी तो क्योंकि ऑयल और गैस की रॉयल्टी इतनी आ रही थी
1: जी,
0: तो उन्होंने इस पे सोचा नहीं कि इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए या अपनी डाइवर्सिफाई किया जाए इकोनॉमी को
1: जी।
0: तो अब उसके नुकसान तो अब हम सबको आ रहे हैं, पूरे कैनेडा को आ रहे हैं
1: जी।
0: तो देखेंगे कुछ जो है बेहतरी की तरफ जो ना हालात चले जाए कनाडा के, और जो है खास तौर से ऑयल एंड गैस पे जो हमारा इन्हेसार है वो थोड़ा कम हो, और दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे लिए जो ना एक बैकअप के तौर पे भी काम करना शुरू करें।
1: बिल्कुल सर। सो शकील भाई, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज है उसको शेयर करने के लिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को और देखने वालों को?
0: संदेश यही है जनाब अमृत जी के जो है अब तकरीबन अंदाजन 2 महीने और है
1: जी,
0: अगस्त भी कंपैरेटिवली बेहतर होता समर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और
1: जी
0: जो सितंबर भी
1: जी,
0: बस अपना जो है ना ये जो वाइल्ड फायर है ये किसी भी जगह किसी भी पार्क में किसी भी वक्त लग सकती है, तो इसके एहतियात करें
1: जी,
0: और जो है अपनी अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की भी करें, सबसे बढ़ के शहर की, क्योंकि ये आप जितना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं अगर जरा सी गफलत से जो है चीजें आगे पीछे हो जाए तो वो आपका जो ना लाखों डॉलर जो ना लम्हों के अंदर आपका गुजाया हो जाता है। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि चीजों को बेहतर से बेहतर करें, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए जो है ना उसमें किरदार अदा करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा सर। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने

0: के लिए तो आपसे दोबारा बातचीत होगी। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शकील अहमद साहब, जिन्होंने सारी बातचीत करी और बताया बीसी वाइल्ड फायर के बारे में और ईरान और अमेरिका की जो इस समय वॉर सिचुएशन है। सो आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है आज के प्रोग्राम के थ्रू, और आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार और इन्फॉर्मेशन और नए और गेस्ट के साथ। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो कैलगरी में इवेंट्स हो रहे हैं और कैलगरी में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, नई बिजनेसेस आ रहे हैं, उसके बारे में अवगत कराया जाए ताकि आप उनका फायदा उठा सके। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो सुसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर, प्रोग्राम आपकी आवाज। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।
1: आज फिर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुंचा अते रमन वड़ाच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ।